जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज नी जय। दिल्ली अक्षरधाम महोत्सव नी जय। जय जय। रोजनी जेम आपणे सौ स्वामी श्रीनी स्मृति साथे हाथ जोड़ीने श्लोक गानो करशुं।

गुणत मारा गाववा बुद्धि आप जो सुख कंद। श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय। अक्षर

0: जन्म मरण ये तरण दुख साधु स्वामी कह साधु आज आप तो बहुत शास्त्री महाराज एटली बड़ी दया करी है योगी आप प्रमुख साहब महाराज सत आप कहूँ नहीं पड़ सामे थी पंतए आया पशी पन गोटा मरे अपने संग न रखिए अने गमे उन्हें संग करिए अभाव गुण लेते हो आ करते हो एने संग करिए तमारा में आ गुण सब वो तो सत्पुरुष ना गुण तो बाजू में रहे पर तुम्हारे नफट आई आवे तेमा एक तो भगवान की उपासना बीजू साधु रखवा तीजो देह आत्मा जुदा समझवा ये मोटी घाटी है चौथों उत्तम भोग में राग टाड़ो ये चार बड़ी घाटी है खरेखर ये चार ए पहली तो आप भगवान की दया थी अपने भगवान की उपासना थी एम तो खाटी गया है जो मुद्दों साधु रखवा एम बुद्धि वापरी पड़े जीव वापर पड़े कि जे अभाव गुण लेते होने संग न करो खरे खरे तमने क्या ने क्या मुकी दे देखाए तब सत्संग करो छो एकांतिक शास्त्री वायुगी अब प्रमुख सत्संग करो छो तम देखाए बीजा ने समझा पर अभाव गुण लेते हो तो क्या खाड़ा में नाखी दे तीजो देह ने आत्मा जुदा सोजा चौथु उत्तम भोग में राग टाड़ो ते करो तो सर्वे कारण साधु साधु बदी और कारण बड़ी समझ आपे आ कुसंग कोने कहे सारा साधु कोने कहे बड़ी और कारण आपे अरे साधु ने पकड़ आप तो बहु दया करी है भगवान की दया पन मन का वचन साधु सेविया ना हो तो गोटा वरी है शास्त्री योगी और प्रमुख साहिब महाराज हो तो हमें देखा है तमने संग करते लगे आई समझ खरेखर मन का वचन साधु सेवा है तो अभी समझ आपे सहजान साई महाराज नी जय
1: अभी अक्षरधाम अवनिमा ऐश्वर्य मुक्तो लई शोभे अक्षर साथ सुंदर छवि लावण्य तेजोमयी कर्ता दिव्य सदा रहे प्रगट जे साकार सर्वोपरि सहजानंद कृपाणुने नित्य नमो सर्वावतारी हरी।

चरित्र गाऊं प्रभु जी तमारा, अखंड सौभाग्य गणी अमारा, इच्छा उरे एज प्रभु जी मारी, स्मृति रहो अंतर मात मारी, मंगल मूर्ति महाप्रभु श्री सहजानंद सुख रूप,